हे शब्द धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पुंज बाणी दे बोहित

अंदर क्रोध दी अगन पड़क रही है। इना दे अंदर नफरत द्वेष भावना दी अगन पड़क रही है, जो इना नु मजबूर कर दी है कि ए जुलम करन। ए सोच रहे ने कि मैं भी इस तपस दा प्रभावित हो जावा, इस नाल मैनु भी कुछ प्रभाव पवे, पर मेरे गुरु ने, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे अंदर एक नाम दा, जो सारिया शीतलतावां दा एक सोमा है, वो ऐसा अमृत नाम बख्शिश कीता है कि ए तपदे होए कड़ाहे, तपदे होए हिरदे उस नाम दी शीतलता नू प्राप्त करके शांत हो जांदे। पर ए शीतलता, नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है जिन्हां दे भाग चंगे होवन, जिन्हां दे श्रेष्ठ उत्तम भाग होवन। ते हरी नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है, वरना मनुख जबान तो ते जब जरूर जपदा है उस परमेश्वर दा नाम, पर जे अंदर क्रोध दी अग्नि होवे ओ जपे दा कोई फायदा नहीं। जे अंदर लोभ दी लालसा होवे, जे अंदर नफरत होवे, द्वेष भावना होवे, उस रसना तो जपे दा कोई फायदा नहीं। तो हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारे संसार नू एक शांति दा उपदेश दिता है। ए क्रोध दी अग्नि बुझ सकती है जे नाम दा शीतल अमृत, ओ सरोवर, ओ सोमा हिरदे विच वसाया जावे।

पूरे गुरु दा मिलाप होया, उदी बख्शिश होई है। जमदूत मेरे नालों हट गए ने, उना दा सहम मैनू हुण सता नहीं रहा, वो भज गए ने मेरे कोलों।

सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणी है। सतगुर कीरी से होर कछु बिच बोल दे से।

ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल की मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परे। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा,

वो धनवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला हो, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिए ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

आपस विच काम पे है। एक मित्र ने किया लै मित्रा मेरा काम करना ही, कह लगा चंगा कर देवांगा। समा पै गया भुल गया ना कीता। एक दिन मुलाकात हुई।

कोई ना रखना। विश्वास घाती अकिरत करना, विश्वास घाती किसनू कहिंदे ने, जिहड़ा किसे नू प्यार विच लिया के बसा के मारे, अपना बना के मारे।

0: जीवन का बतावन रहे, गुरबिन ज्ञान हो, ओ गुरबिन ज्ञान हो।
1: पापा जी थोड़ी इस छबील के आसरे साडा पेंडा कटिया जाता है,
2: आसरा उसका आधार था। मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी, खुश रहो।
2: आप उधर ले पी, ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया,
2: अब मोहे जलत राम जल पाया, राम अधिक तन जलत बुझाया, मन मारण कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मन में जल लग रहे हैं, थोड़े को हजारों यात्री आते जाते, शायद तुम्हें कुछ पता हो।
2: कादा पता?
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी, पानी दी छपड़ी है, ओदे कंडे ते बेरी दा दरख्त है, ते बेरी ते कां बैठदे ने।
2: छपड़ियां ते कई ने, ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत
4: ने। बाबा जी ओह जी बेरी ते इक्को ही होएगी जिस तो कां वर्गी छपड़ी।

0: बाबा जी असी चलने हैं।
1: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम, राम जो दादा मुक्त को संत जपावे नाम।
2: उठ परी दायूज साज सुबह नवाज गुलार, जो सिर साई नानी सो सिर कपड़।

0: जलाइए बाल संदे
1: था। और साहब जी की गल है पहला तुसी नहीं गया अजे तक?
2: असी असी किस तरह जानते? सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा।
1: की पूछना सी?
2: सारे मुसाफिरों ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट किया है, पर असी साडे कोल ना तिल चौल ना तरम ना तमड़ा।
1: और चलिए पहले मैं कोई कम कमाइया नहीं करता, मैं तो गुरु के दर्शन आई हूं संगतां की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
2: फिर भी तुहाडी लोड़ा?
1: मेरिया लोड़ा? मेरिया लोड़ा तो खुदावन पूरिया करता है, तो हो भी चाहिए देखिए जो कुछ मैं लोग दे जाते हैं जाके गुरु के दरबार चढ़ा दिना, दिन वेले बेड़ी चढ़ाना, तो राति लंगर चो ढेड़ पड़ के बार थे दसो जाना। मैं उगन हारा को गुण पल्ले नहीं
2: तन
1: ते मैं नहीं पैना। तन तो गुरु महाराज है जरा सब अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलाता है, और दर से जाओगे तो उन्होंने कहना जिन्हें सानू यह सागर पार कराया उस अवगन हारे इस पाव सागर तो पार उतारो।

ऐसा हर सेविए नित्य ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित्य ध्याइए,

की जय ताहर ने फल सब खाल गवास मेरे मन हर ऊपर की जय भरवासा जय जाइए तैनाल मेरा स्वामी हर अपनी पैज रखे जनदासा जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे ता आगे अपनी बिर

0: सिकंदर
1: को हर समान नहीं राजा ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सो एकत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ

पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाँ बुरी।

कबहू ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटिए, जुलम नूं देख के कदम पछां ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीहां नूं पक्कियां कीता। फरक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है।

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश की गई है। आप समूह संगत नू खालसा जी दे 300 साला

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहा है, एडा मीह पै रहा है कि रस्ता नजर नहीं आता। आप पुठी प्यारी तुरते हुए अद्धे रस्ते

गुरु पातशाह इतो हुण पिट हो रही है, माफी दे देना। ते फिर व्यासा वाल तुर पे, गागर जल्दी परी सिर ते चुकिया। अज एडा मीह पै रहा है, जखड़ चुल रहे हैं। बाबा अमरदास जी आ सेवा दे पुंज सिर ते गागर चुकी ते दुरदे हुए आ रहे हैं। रस्ते विच जुलाया दी खड़ी

क्योंकि मन विच श्रद्धा सी कि ए जल मैं गुरु वास्ते लेके जा रहे ते सच्चे पातशाह दे इस जल दे नाल इशनान कर। जदों जल दी गागर ना टिकन दिती खड़ाक होया अंदरों जुलाहे ने पूछया

से सरा संसार से बुद्ध तदपन उपमा परणत सुख या मैं रंचन मिथ्या भाखी पार ब्रह्म गुरु नानक साखी रोम रोम जे रसना पाव तदब खालसा जस तै गाव रोम रोम जे रसना पाव तदब खालसा जस तै गाव हम खालसे का सदगे।

अवगण बड़ी तिखी छुरी मनुख दे दैवी गुणा नू कट के नकारा करके सुट देंदी। मनुख मनुख ना रह के पशु हो जांदा। औगणे आरा मनुख पशु है। गुणवान प्रभु अपने प्यारियां दे हिरदे च गुण वसा के तोरदा है। औगणा दे वस पै के बंदा थले गिर जांदा, अपनी हस्ती तो नीवा हो जाता। अवगुण मनुख दे गुणा नू कटदे ने दी हस्ती नू कटदे ते सतगुरु अवगुणा नू कटदे। सतगुरु दे नजदीक होइए, सतगुरु दे चरणी लगीए ते अवगुण कटे जांदे, अवगुण कटे जांदे ने गुण निसरदे। जिस सतगुरु पासों प्रभु नाल जुड़न दा उपदेश मिलदा, जिस सतगुरु पासों हिरदे च नाम वसाउण दी जाच आउंदी, जिस सतगुरु ने आपां हुणे तक पढ़ रहे सां एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना मूआ, ऐसा जीवन बख्शिया है जो टिकिया रहन वाला अटल जीवन है। ऐसा जीवन बख्शिया है जिहड़ा मौत तो उपर है। और आप देखते हो मौत आउंदी है ते बंदे दी कहानी मुक जांदी, मनुखी जीवन दी कहानी मुक जांदी। लेकिन एक गुरु का सिख है जिदी जिंदगी मौत कबूलन तो बाद शुरू होंदी। पहला मरण कबूल जीवन की छड आस। औगण मर जांदे, नकारा मनुख मर जांदा। एक सच्चे मनुख दा जन्म हुंदा, गुणा दा जन्म हुंदा, दैवी गुणा नू लै के मनुख उपर नू उठदा, गुरु नू प्यारा लगदा, गुरु नू पाउंदा है, संसार नू चंगा लगदा। और मेरे साहब ने ऐसी बख्शिश कीती है सानू, जिवें महाराज ने पावन बाणी च किया है ना, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे। तैनू पता है साडा की हाल हुंदा सी, तेरे चरनी लगन तो पहला साड़ी की अवस्था सी। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तेरे चरनी लाके असी कीड़े बादशाह हो गए, सरदार हो गए, मान वाले हो गए। रुलते फिरते कीड़े सत्कार योग हो, और ये सत्कार इत्थे भी मिलता है तेरी दरगाह विच भी मिलता है। तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले है चूके सब सोग संतापे। जिंदगी विचों संताप निकल गए, चैन आ गया, सुख आ गया जीवन में। कायर हुंदे सां बहादुर बना दिता, नफरत नाल भरे सां प्यार नाल भर दिता, आलसी हुंदे सां उद्यमी बना दिता, बुरा चित हुंदे सां सेवादार बना दिता, परोपकारी बना दिता। और जिसने औगण कट के गुण समझा के सानू इन्ने योग कीता है, अमृत दियां दातां दे के, नाम दियां दातां दे के, बाणी दी सौगात बख्श के, जीवन दा सुचज बख्शी है। साहब कहिंदे ने जिन जग जीवन उपदेशिया तिस गुर को हों सदा घुमाया, मैं वारने जावां सतगुरु तो, तिस गुर को हों खनिए मैं टोटे टोटे हो जावां, बलिहारने जावां उस तो। जिन मद सूदन हर नाम सुनाया, जिसने वाहिगुरु का नाम मेरे हिरदे विच सुना के वसाया, तिस गुर को हों वारने जिन होमे बिख सब रोग गवाया, होमे वर्गे महारोग मेरे जीवन विचों कटे ने जिसने, तिस सतगुर को वड पुन है उहदा कोट आन कोट धनवाद, उहने बड़ा पुन कीता मेरे ते। जिन अवगुण कट गुणी समझाया, सदा उह सतगुरु नूं चेते रखना गुरसिख दा फर्ज है, उहदा परउपकार साडे सिर ते, उहदी बख्शिश साडे सिर ते करदा है। जिसने हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बौसाने, साडे मथे ते अपने अपने प्यार दा दाग ला के, अपने प्यार दी निशानी ला के, अपना बना के अपना रूप दिता है, अपना सुचज बख्शी है, अपना प्यार बख्शी है,
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਾਂ, ਹਮ ਕਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਸ਼ਾ।

करने आया हाँ उदो तो मेरे मन नु शांत हुण ते जेड़े मेरे अंदर वसदे हुए मेरे दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जेड़े वैरी सन ऐ पातशाह हुण ते ओ भी मेरे मित्र बन गए हैं ओ भी हुण मेरा बुरा नहीं चित वदे सारे ही चंगा चित वदे हैं ये सब तेरी कृपा है ये तेरी मेहर है तू तो मैनू एनिया बख्शिशा कीतियां हैं एनिया रहमतां कीतियां हैं पातशाह हुण ते मैं आनंद ही आनंद वेख रहा हाँ चारे पासे खेड़ा ही खेड़ा नजर आउंदा है क्योंकि तेरी कृपा दृष्टि हो गई है ते जदों तेरी कृपा दृष्टि होवे सारे कार्ज फिर अपने आप रास हुंदे हन ते सतगुरु तेरी मेहर है तेरी कृपा है।

मैता कालू जी राय बुलार दे पटवारी सन। आख्या मैता जी आपनू राय जी याद करदे हैं, उस बन विच बैठे हन ब्रिख हेठां जिथे गुरु नानक दे दर्शन कीते सन उन्हां। मैता जी आए, राय जी ने आउंदे ही पुछया, मैता जी कोई गुरु नानक दा सुख स्नेहा आया? मैता कालू जी कहन लगे कोई नहीं आया, 12 साल बीत गए कोई स्नेहा नहीं आया। आख्या मैं ता उस वेले नू कोसदा हां, राय जी मैं अपने हाथ वाल वेख के अपने हाथ नू सराप देंदा हां के तू सुख के तीला क्यों ना हो गया, क्योंकि मैं ही सां जिसने 20 रुपया दे पिछे गुरु नानक दे मुंह ते चपेड़ मारी सी। राय जी जापदा गुरु नानक हुण नहीं आवेगा। आख्या इवे ना आखो, तू बेबे नानकी जी नू खबर भेज। मैता कालू ने आख्या बेबे नानकी नू खबर भेजी है सुल्तानपुरी, जापदा ओ भी इत्थे आवेगी, क्योंकि घर दी हालत तां बहुत खराब है, 12 साल हो गए हन गुरु नानक नू घरों गया, घर तां घर नहीं है खंडर बन चुके, क्योंकि जिस घर दा चिराग 12 साल हो गए हुण बार होवे, जिस माता दा इको इक बच्चा इको इक लाल होवे ते ओ भी 12 साल हो गए हुण गया होवे घरों, ते कोई सुख स्नेहा ना हो।

देवी देवत्या ने चात पाई ए कौन गा रहे है की वेख्या तन गुरु नानक सच्चे पातशाह मर्दाने दी बांह विच बांह पाई है ते चूमदे होए जा रहे हन ते की जप रहे हैं।

मत नाल वाहिगुरु नूं याद करना सी ओह मत पसारियां ने मार ली नहीं इत्थे तां आउणा ते जाणा है इत्थे तां धर्म कमाउणा है ते धर्मशाला जाण के टिकणा ते तुर जाणा है मन इत्थे नहीं लाउणा मन ओहदे नाल लाउणा है जिसने भेजिया है ते बुलाउणा है महाराज कहंदे ने कोयल आया कोयली क्या तिस डंफ पसार मोहलत पुन्नी चलना तू संभल घर बार हर गुण गाओ मना सतगुर सेव प्यार गुरु की सेवा प्यार नाल कल प्रभु नु याद कर ओदे गुण गा क्या थोड़ी बात गुमान जैसे रहन प्राहो ने उठ चल से प्रभात क्या तू रत्ता ग्रस्त से ओ सब भोला की बागात मेरी मेरी क्या करे जिंदिया सो प्रभ लोड सर पर उठी चल सा चलना छड़ जासी लख करोड़ लख चौरासी प्रमतियां दुलभ जन्म पायो नानक नाम संभाल तू जिदी लोड़ है तेनू एथे भी ते दरगाह विच भी जिसने तेरा मुख उजला करना है।

गुरु अर्जुन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं, चरण छलो मार्ग गोविंद। ये केड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता है। वो मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर की उस्तुति करनी, ओदे गुण गाउने। ये मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ए रचना पवित्र हो जाती है जो नाम का अमृत पींदी है, जपदी है श्री वाहेगुरु। निर्मल रचना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर लै जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम का अमृत समा गया है, उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु का परिवार नजर आते हैं। जे उदा परिवार है तो एक पिता एक सिखे हम बालक, साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसके बालक हाँ। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत च बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगे। आओ सारे प्यार दे नाल जप।

नाम ध्याया, जिन्हां ने नाम नू ध्यावना कीता, जिन्हां ने नाम दी गालना खालियां ए मुशक्कत कीती है, फिर वो आप ही नहीं तरे, अनेकां जीव होर भी उना दे चरना नाल लग के तर गए। गुरमुख कोट उधारदा गुरमुख कोट उधारदा दे नामे एक कण, जिन्हां ने नाम दी घालना घाली नाम दी कमाई कीती ओ फिर अनेकां नू होरना नू भी नाल ही तार के गए हन। इसलिए हजूर बख्शिश करदे हन चरण चलो मार्ग गोविंद, इस मार्ग ते चल के अपने जीवन नू असी सफल करना है। गुरसिख दा जीवन अमृत वेले उठना, इशनान करना, ते फिर सतसंगत विच बह के मालक दी सिफत सलाह करनी, ए गुरसिखी है, ए जीवन है सिख दा। इस मार्ग नू हजूर दस रहे

चरण छाया है उदो तो मेरे मन नु शांति हुण ते जेड़े मेरे अंदर वसदे हुए मेरे दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जेड़े वैरी सन ए पातशाह हुण ते ओ भी मेरे मित्र बन गए हैं ओ भी हुण मेरा बुरा नहीं चितवदे सारे ही चंगा चितवदे हैं ये सब तेरी कृपा है ये तेरी मेहर है तू तो मैनू इनिया बख्शिशा कीतिया हैं इनिया रहमत कीतिया हैं पातशाह हुण ते मैं आनंद ही आनंद वेख रहा हाँ चारे पासे खेड़ा ही खेड़ा।

एक होर शब्द विच अपनी जीवन दी ओ झाकी दर्शा रहे ने, जो कुछ उन्हां नाल बीतिया, जो कुछ उन्हां नाल कीता गया। कहंदे हन एक वारी दा जिक्र है, मेरिया बाहां बन के लत्तां बन के गठड़ी दा रूप दे के, गठड़ी वंगर जिवें गठड़ी बद्दी हुंदी, मैनूं हाथी अगे सुटिया गया। पूजा बांध पिला कर डारियो, पर वाहिगुरु तेरा लख लख शुक्र है, हाथी नू उस गठड़ी विचों पता नहीं कैसा अक्स पिया, की दिसिया, हाथी चीका मारदा भज गया।

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। वांकेर दे बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां पर मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी कीती, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल कीता, कोई गलत काम ही नहीं कीता, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले।